सांस को दर्ज किया जा सके। ग़ज़ा में एक गाड़ी के अंदर अपने ख़ानदान के साथ मशहूर हो जाने वाली नन ही हिंद रजब की कहानी अब महज एक ख़बर नहीं है। वो कहानी इंसानियत के मुश्तरक ज़मीर पर नक्श हो जाने वाला एक ऐसा मंजर बन चुकी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। डैरिन जे सैलम ने फिल्म फरहा के ज़रिए नकबा वो अलमिया जब फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाला गया वो आज अम्माद बरनात की दस्तावेजी फिल्म फाइव ब्रोकन कैमराज में नज़र आने वाली हकीकत के साथ जुड़ जाता है। एक कैमरा टूटता है तो उसकी जगह नया कैमरा आ जाता है। डिजिटल एल्गोरिथम चाहे आज फ़लस्तीन की आवाज़ को दबाने की जितनी भी कोशिश कर ले, बसरी याददाश्त दराड़ों से छनती हुई रोशनी की तरह दुनिया तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा ढूंढ लेती है। फ़लस्तीनी सिनेमा हमें यह सिखाता है कि एक कौम बाज़ औक़ात अपना घर खो देती है, अपनी गलियां खो देती है, यहां तक कि अपने शहर भी खो सकती है, लेकिन जब तक तस्वीर और मनाजर बाकी हैं याददाश्त जिंदा रहती है। और जब तक एक डायरेक्टर ख्वाब देख रहा है, एक अदाकार याददाश्त को हकीकत का रूप दे रहा है और एक कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, फ़लस्तीन की ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी भी हमेशा ज़िंदा रहेगी। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

पैर कूलिंग, लेकिन क्या ये वाकई काम करेगा? खला की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। आज हम मस्नूई ज़हानत के दौर के सबसे दिलचस्प मंसूबों में से एक यानी खला पर मबनी डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। चीन ने गुज़िश्ता माह ज़मीन से 800 किलोमीटर ऊपर डेटा सेंटर्स कायम करने का 5 साला मंसूबा पेश किया है। एलन मस्क ने भी इसी हफ्ते इसी तरह के मंसूबों का ऐलान किया है और स्पेस एक्स के मदार में डेटा सेंटर्स के अहदाफ की माली इआनत के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स जमा करने शुरू कर दिए हैं। माहिरीन इन पेशरफ्तों को खला में डेटा सेंटर्स कायम करने की एक स्ट्रेटेजिक चाल करार देते हैं, जहां मस्नूई ज़हानत का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन की पाबंदियों के बगैर फैल सकता है। लेकिन मसला कहां है? दुनिया भर के डेटा सेंटर्स मस्नूई ज़हानत की तवानाई की बेपनाह तलब की वजह से शदीद दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े AI मॉडल्स की तरबियत के लिए इतनी तवानाई दरकार होती है जो सालाना लाखों घरों की बिजली की जरूरियात पूरा कर सके। डेटा सेंटर्स के करीबी इलाकों में बिजली की कीमतों में गुज़िश्ता 5 साल में 267% इजाफा हुआ है। एक औसतन 100 मेगावाट का डेटा सेंटर रोजाना इतना पानी खर्च करता है जितना 6,500 घरानों का यौमिया इस्तेमाल होता है। खला की वसत लामहदूद शमसी तवानाई और कुदरती कूलिंग की सहूलत फराहम करती है। मस्क स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स के जरिए 4 से 5 सालों में जमीन के बुलंद मदार में 100 गीगावाट बिजली फराहम करने का इरादा रखते हैं। गूगल भी प्रोजेक्ट सन कैचर के इकदाम के तहत 2027 में एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगा। खला में कूलिंग फैन या पानी के बगैर ठंडक मुमकिन है। लेजर टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स के दरमियान डेटा को फाइबर ऑप्टिक से ज्यादा तेजी से मुंतकिल करती है। इसका मतलब है कि मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स की तेजी से तरबियत और लामहदूद तरक्की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई की पेशगोई है कि 10 सालों में खला पर मबनी डेटा सेंटर्स इतने ही आम हो जाएंगे जितने आज के क्लाउड सर्वर्स हैं। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI समेत बहुत सी दूसरी कंपनियां भी AI दौर में तरक्की के लिए मदारी डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी कर रही हैं। वैसे चैलेंजेस बहुत हैं। बड़ी AI कंपनियों की पुर उम्मीदी के बावजूद बहुत से माहिरीन का कहना है कि मदार में मस्नूई ज़हानत तक का रास्ता रुकावटों से भरा हुआ है। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय खलाई पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो जर्मन गेट्रेस के मुताबिक खला में थर्मल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका AI कंपनियों को सामना होगा। मस्नूई ज़हानत की चिप्स शदीद गर्मी पैदा करती हैं। खला में उन्हें ठंडा करने के लिए हवा फूंकना नामुमकिन है। गुटरेस वजाहत करते हैं, मदार में आपको तापकारी के जरिए हरारत को खारिज करना पड़ता है। AI तरबियत के दौरान पैदा होने वाली तवानाई की कसाफत में इस हरारत को दूर करना एक ऐसा बड़ा मसला बन जाता है जिसे महज बड़े कूलर के इस्तेमाल से हल नहीं किया जा सकता। लॉन्चिंग लागत एक और बड़ी रुकावट है। गुटरेस के मुताबिक जब तक स्टारशिप जैसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेटों के जरिए लॉन्चिंग की कीमत तकरीबन $200 फी किलोग्राम तक नहीं गिर जाती, ये लागत एक मसला रहेगी। वॉशिंगटन में सेटा थिंक टैंक के उभरती हुई टेक्नोलॉजी के माहिर उजान अहमद चेतिन भी समझते हैं कि हरारत का इखराज ही असल मसला है। बिजली की पैदावार के लिए देवहैकल सोलर पैनल्स और बैटरियों की जरूरत है ताकि मदार के ग्रहण से निपटा जा सके, जबकि तापकारी इलेक्ट्रॉनिक आलात को खराब कर सकती है जिसके लिए इजाफी तहफ़ और फॉल्ट टॉलरेंट सॉफ्टवेयर दरकार होंगे। चेतन का कहना है कि ये चैलेंजेस नाकाबिले तस्खीर नहीं हैं, लेकिन इन्हें अचानक हल करना मुश्किल है। जहां तक टाइमलाइन का ताल्लुक है, दोनों माहिरीन मुबालगा आराई से गुरेज करते हैं। गुटरेस की पेशगोई है कि छोटे नमूने और इब्तदाई खिदमत 2027 में शुरू होंगे। तहम हकीकी हाइपर स्केल AI तरबियती मराकज दिहाइयों बाद कायम होंगे। वो मरहला वार तरक्की देखते हैं।
2020 کی دہائی کے آخر سے 2030 کی دہائی کے اوائل تک مخصوص کاموں کے لیے چھوٹے پلیٹ فارمز، 2030 کی دہائی کے وسط میں بڑے پلیٹ فارمز

और 2040 या उसके बाद गीगावाट पैमाने के प्लेटफॉर्म्स। चेतिन भी इससे इत्तफाक करते हैं कि मखसूस कामों के लिए छोटे मदारी नोड्स दहाई के आखिर तक बन जाएंगे, लेकिन जमीन जैसे बड़े डेटा सेंटर्स मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं हैं। अगरचे खलाई डेटा सेंटर्स माहौलियाती लिहाज से पुरकशिश लगते हैं, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं है। गुटरस तीन फवायद की निशानदही करते हैं। मुसलसल शमसी तवनाई जमीन के ग्रिड्स पर बोझ नहीं डालेगी, तापकारी से कूलिंग पानी के इस्तेमाल को ख़त्म कर देगी और ज़मीन पर इन कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली वसी ज़मीन आज़ाद हो जाएगी। लेकिन ये मुकम्मल हल नहीं है। गुटरेस रॉकेट की तैयारी से होने वाले अखराज, लॉन्चिंग की बढ़ती हुई तादाद और खलाई मलबे के असरात से खबरदार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज़मीनी डेटा सेंटर्स पहले ही साफ तवनाई और जदीद कूलिंग के साथ चल रहे हैं तो हिसाब किताब को खला में ले जाने का फ़ायदा कम हो जाता है। चेतिन के मुताबिक अगरचे ये सिस्टम पानी और ग्रिड्स पर बोझ नहीं डालते, लेकिन रॉकेटों और स्पेयर पार्ट्स की वजह से ज़िंदगी भर के अखराजात बढ़ जाते हैं। वो खलाई भीड़ जैसे मसाइल पर भी तशवीश का इजहार करते हैं। गुटरेस के नज़दीक कम कीमत, दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट, जदीद रेडिएटर्स और मदार में सर्विस देने वाला रोबोटिक सिस्टम्स कलीदी अहमियत रखते हैं। चेतिन भी मुत्तफिक हैं। वो बताते हैं कि खलाई शोबे में किसी चीज़ की नकल करना IPR और सप्लाई चेन की पुख्तगी जैसे मसाइल की वजह से फौरी मुमकिन नहीं होता। उनका अंदाज़ा है कि बड़े खिलाड़ी 2 से 4 साल में डिज़ाइन की नकल कर सकते हैं, लेकिन इसे वसी पैमाने पर अपनाने में 5-10 साल लग सकते हैं। सामीन, ऐसा लगता है कि खला पर मबनी डेटा सेंटर्स एक दिलचस्प मुस्तकबिल का वादा करते हैं, लेकिन सामने संगीन तकनीकी और माहौलियाती चैलेंजेस भी हैं। हमारी अगली पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

अबीब 2 साला नस्ल कुशी की जंग की रफ्तार को दोबारा बहाल करना चाहता है। हमास ने आज बरोज जुमेरात जारी करदा बयान में गजा शहर के मरकज में एक रिहायशी इमारत पर रात के वक्त किए गए और 2 बच्चों और 2 औरतों समेत 10 फलस्तीनियों की हलाकत का सबब बनने वाले इसराइली फजाई हमले को नया जुर्म और शर्मुल शेख फायरबंदी समझौते की दोबारा और खुली खिलाफवर्जी करार दिया है। शर्मुल शेख जंगबंदी मुआहिदा अक्टूबर 2025 में तुर्की, मिस्र, कतर और अमरीका की सालसी में तय पाया था और इसी माह नाफजुल अमल हुआ था। ये मुआहिदा 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली 2 साला गजा जंग के बाद किया गया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इस नस्लकुशी जंग में इसराइल ने 72,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल और 1,72,000 से ज्यादा को जख्मी कर दिया और शहरी बुनियादी ढांचे के तकरीबन 90% को तबाह कर दिया है। हमास ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा भर में शहरियों पर हमलों में इजाफा और गुज़श्ता 2 दिनों में रिहायशी इलाकों पर हमलों में 20 से ज़ायद फलस्तीनियों का कत्ल जाहिर करता है कि इसराइल बड़े पैमाने की फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने का इरादा रखता है। हमास ने इसराइल पर यह इल्जाम भी आयद किया है कि वो सालिस ममालिक की कोशिशों को नजरअंदाज कर रहा है और जंगबंदी मुआहदे के तहत दी गई जमानतों और वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली फौज ने जनूबी लुबनान के शहर सूर के शहरियों से शहर से निकलने का मुतालबा किया और कहा है कि हमने सूर पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। जुमेरात को इसराइली फौज ने सूर के इतराफ में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और इलाके पर नए हमले शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से 1 रोज कबल इसराइल ने सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वाक़ सूर समेत दरिया जोहरानी के जनूब में वाक़ तमाम इलाकों को जंगी इलाके करार देकर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्ला के खिलाफ हमलों से पहले शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत दी थी। 17 अप्रैल की जंगबंदी के बाद पहली बार जारी की गई ये वसी पैमाने की वार्निंग ऐसे वक्त में सामने आई है जब बहुत से लुबनानी ईद उल अजहा मनाने की तैयारियां कर रहे थे। इसराइली फौज ने जुमेरात की सुबह सूर के बाज इलाकों के रहायशियों को नए इनखला के अहकाम दिए और कहा है कि हिजबुल्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। बाद असा फौज ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि हिजबुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। लुबनान की सरकारी खबर एजेंसी ने जारी करदा खबर में कहा है कि इसराइल ने जुमेरात की सुबह सूर शहर और इसके मशरकी इलाके में 2 मुख्तलिफ हमले किए जिनमें 1 इमारत को निशाना बनाया गया और शहर में आग भड़क उठी। इसराइल ने इस हफ्ते लुबनान में अपनी कार्रवाइयां तेज करने का अज़्म जाहिर किया और जमीनी ऑपरेशनों को वसी करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब हिजबुल्ला ने कहा है कि इसके जंगजू इसराइल की जानब से जनूबी लुबनान में मुकर्रर करता पीली लाइन के पायर इसराइली फौज से झड़पों में मसरूफ हैं। अमरीका और चीन के दरमियान ताइवान के मामले पर मुमकिन तसादम के एटमी सतह तक बढ़ने का खतरा है। लंदन के मारूफ दिफाई तहकीकी मरकज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने आज बरोज जुमेरात खबरदार किया है कि ताइवान के मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान जंग एटमी सतह तक पहुंच सकती है और दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के कमांडर और मवासलाती मराकज को निशाना बनाने वाली वसी पैमाने की फौजी कार्रवाइयां कर सकती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने इस हफ्ते के आखिर में सिंगापुर में मतवको एशिया की सबसे बड़ी सालाना दिफाई कॉन्फ्रेंस से कबल जारी करदा स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया एटमी हथियारों की एक नई दौड़ के धाने पर खड़ी है और एशिया बहरुल काल खित्ता इस दौड़ का मरकज बन चुका है। IISS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खित्ते के ममालिक और स्ट्रेटेजिक मफादात रखने वाले फरीक अपने एटमी जखायर में और गैर एटमी रियासतें दूर मार रवायती हमलावर सलाहियतों में इजाफा कर रही हैं। ये दोनों रुझानात स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरा बन रहे हैं। अमरीकी या चीनी हुकाम की जानब से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई रद्देअमल सामने नहीं आया। कीनिया के वस्ती इलाके नाकोरो में वाके ऑटोमेशिक गर्ल्स एकेडमी के एक हॉस्टल में रात के वक्त लगने वाली तबाहकुन आग के नतीजे में कम से कम 15 तालिबात हलाक और 73 जख्मी हो गई हैं। कीनिया के टीवी चैनल सिटीजन टेलीविजन ने जुमेरात को नशर करदा खबर में कहा है कि रिफ्ट वैली के इलाकाई पुलिस इंस्पेक्टर सैमुअल नरानी ने अमवात की तस्दीक की है और इमदादी कार्रवाइयों के दवाम के दौरान अमवात में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। जख्मियों की हतमी तादाद अभी वाजे नहीं हो सकी। रिफ्ट वैली के इलाके में वाके नाकोरो मुल्क के बड़े शहरी मराकज में से एक है और कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 160 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाके है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी टीमें, पुलिस एहलकार और इंसानी इमदादी तंजीमें स्कूल पहुंच गई हैं। मुतासरीन के अहल खाना भी लापता तालबात के बारे में मालूम के इंतजार में इलाके में जमा हैं। अक्वामे मुत्तहदा ने खबरदार किया है कि यूरोप में गर्मी की लहर मौसमियाती बहरान की अलामत है। अक्वामे मुत्तहदा के मौसमियाती सरबराह सैमोन स्टिल ने कहा है
کہ مغربی یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر فوسل ایندھن سے پیدا ہونے والے موسم

क्लब की जानब से इस क्लब को खरीदने की कोशिश को रोक दिया। एक तवील अरसे से कायम डेनमार्क क्लब ब्रांड बी के मदाहों के रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा मालकन के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगला कौन होगा। इसकी वजह यह है कि प्राइवेट इक्विटी ग्रुप सरमायाकारी करने से पहले ही अपनी एग्जिट हिकमत अमली को वाजिया कर चुके हैं। इनके लिए क्लब एक कम्युनिटी वर्सा नहीं बल्कि वक्त आने पर फरोख करने वाला एक असासा है। मौजूद सामीन, आज हमने फुटबॉल के मैदान की किस तरह एक बड़ी जोग्राफी मीशत की तजर्बा की माहिर इख्तियार करने का जायजा लिया है। फुटबॉल अब गोलों की तादाद तक महदूद नहीं, ये तो बनाए कि मुंतकलीस फारती चालों माली सिलसिलों का मजबू है। एम सी ओ रोहचान का अरूज UEFA जैसे रवायती इदारों को गैर फाल करने की सलाहियत रखता है। अगर समयकारों का एक छोटा ग्रुप यूरोप के सबसे बड़े क्लबों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो खेल के असूल अब फेडरेशन नहीं बल्कि इन ग्रुपों के जरिए तय किए जाएंगे। जैसा कि हम इस डिजिटल जौहरी दौर में इन हालात का जिक्र कर रहे हैं तो खेलों की दुनिया ने अपनी जौहरी ताकत खतरात को जन्म दिया है। तुर्की अपने इख्तियार को महफूज रखते हुए इस आर्मी खेलों की मईशत की दौड़ में किस नोयत के स्ट्रेटेजिक कदम उठा सकता है, इस मौजू का जायजा आइंदा की अकसात में लिया जाएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान ओबरू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई माईशत।